0: श्रोतेहो, आणि आता वेळ झाली ती SCG मानवता या प्रायोजित कार्यक्रमाची.
1: भारतातील एक अग्रगण्य कॅन्सर हॉस्पिटल SCG मानवता कॅन्सर सेंटर, मुंबई नाका नाशिक. हेल्पलाईन नंबर 1800-266-5858. प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम मालिका SCG मानवता कॅन्सर जनजागृती अभियान. निर्माती गायत्री बस्ते.
2: नमस्कार, आज हम एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं. स्कल बेस्ड ट्यूमर्स, यानी वो कैंसर्स जो हेड एंड नेक रीजन से बढ़कर ब्रेन के नीचे का हिस्सा स्कल बेस तक पहुंच जाते हैं. मैं डॉक्टर मोहसिना हुसैन, हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन, HCG मानवता कैंसर सेंटर, नाशिक. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्कल बेस होता क्या है. ये हमारे ब्रेन का बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, एक तरह का जंक्शनल एरिया, जहां से नर्व्स, ब्लड वेसल्स और आंख, नाक, कान से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं. इसी वजह से यहाँ होने वाले ट्यूमर्स या यहाँ तक पहुंचने वाले कैंसर्स का ट्रीटमेंट काफी डेलिकेट और हाईली स्पेशलाइज्ड होता है. अब बात करते हैं टाइप्स की. स्कल बेस ट्यूमर्स दो तरह के हो सकते हैं, जो डायरेक्टली स्कल बेस से ओरिजिनेट होते हैं, और दूसरे जो आसपास के एरिया से बढ़कर यहाँ तक पहुंचते हैं. हेड एंड नेक प्रैक्टिस में दूसरा टाइप ज्यादा कॉमन देखा जाता है, जैसे कि साइनोनेजल कैंसर्स, यानी नाक और साइनसेस के कैंसर्स. ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रो करते हुए स्कल बेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा नेजोफेरिंग्स के कैंसर्स, ऑर्बिट के पास के ट्यूमर्स या ओरल कैविटी या मुंह का कुछ एग्रेसिव कैंसर्स भी रेयर केसेस में स्कल बेस तक स्प्रेड कर सकते हैं. कॉजेस की बात करें तो कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हमको तो पता ही है, जैसे टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल. लेकिन कुछ अनकॉमन कॉजेस जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे वुड डस्ट, केमिकल्स, स्पेशली साइनोनेजल कैंसर्स में, कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि HPV या EBV, और कभी कभी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहते हैं. सिम्टम्स इनिशियली बहुत सटल हो सकते हैं, जैसे परसिस्टेंट नाक बंद होना, नाक से ब्लीडिंग, हेडेक, आंखों में सूजन, विजन प्रॉब्लम्स या फेशियल नमनेस. इसी वजह से डायग्नोसिस कभी कभी लेट स्टेज पर होता है, जब ट्यूमर्स ऑलरेडी स्कल बेस तक पहुंच चुका होता है. लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, एडवांस स्टेज का मतलब होपलेसनेस नहीं है. ऐसे केसेस का ट्रीटमेंट एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से होता है. एक एक्सपीरियंस हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन, न्यूरोसर्जन, ENT स्पेशलिस्ट और एक स्किल्ड प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन मिलकर ये सर्जरी प्लान करते हैं. सर्जरी का गोल होता है ट्यूमर को कंप्लीट रिमूव करना, ऑफ कोर्स, और बिना ब्रेन या क्रिटिकल नर्व्स को डैमेज किए पूरा ट्यूमर को निकाल लेना. ये काम सिर्फ एक्सपीरियंस, प्लानिंग और एडवांस टेक्निक से ही पॉसिबल है. हमें गर्व है कि HCG मानवता कैंसर सेंटर में हमने ऐसे कई कॉम्प्लेक्स केसेस सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं, जिन्हें पहले कहीं और इनऑपरेबल कह गया था. लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी पर खत्म नहीं होता है. सर्जरी के बाद एडवांस रेडिएशन थेरेपी, जैसे प्रिसिशन बेस्ड रेडियोथेरेपी दी जाती है, ताकि माइक्रोस्कोपिक डिजीज को भी कम्प्लीटली कंट्रोल किया जा सके. कुछ कुछ सिलेक्टेड केसेस में इम्यूनोथेरेपी भी यूज कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके कैंसर सेल से लड़ने में मदद की जाती है. ये मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस आउटकम को और बेटर बना देते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट पर्सनलाइज होता है. यहाँ MDT यानी कि ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स में हर स्पेशलिस्ट मिलकर बेस्ट पॉसिबल प्लान डिसाइड करता है. तो अगर आप या आपके किसी को ऐसे सिम्टम्स है, या किसी को बताया गया है कि ट्यूमर स्कल बेस तक पहुंच गया है,

0: ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो प्लीज एक बार सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं HCG मानव द कैंसर सेंटर को। हो सकता है कि जहां आपको नो मिला हो वहां से एक नई होप शुरू हो। याद रखिए, सही समय पर डायग्नोसिस, सही टीम और एडवांस ट्रीटमेंट, ये तीन चीजें मिलकर सबसे डिफिकल्ट कैंसर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: आता आपण ऐकत होता कार्यक्रम मालिका कॅन्सर जनजागृती अभियान, निर्माती गायत्री वस्ते। भारतातील एक अग्रगण्य कॅन्सर हॉस्पिटल HCG मानवता कॅन्सर सेंटर, मुंबई नाका नाशिक। हेल्पलाईन नंबर 1800-266-5858। दर शुक्रवारी सकाळी 7:50 अवश्य ऐका कार्यक्रम मालिका HCG मानवता।
2: श्रोत हो, आणि आता आपण ऐकणार आहोत संगीत मानापमान या नाटकातलं पद, पंडित कुमार गंधर्व यांच्या स्वरातलं।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया

0: पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे
4: India and Vietnam offer something important.
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं एक भरोसेमंद साझेदारी स्थिर शासन आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों इनोवेटर्स निवेशकों टेक्नोलॉजी लीडर्स निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम

0: कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो किसान वाणी,
1: श्रोते हो, आता ठीक 9 वाजल्यापासून 10 वाजेपर्यंत विविध भारतीच्या सहक्षेपणाचा आस्वाद.
2: जुबिन नौटियाल की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे. गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा. आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक. चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे.

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको आप सुना रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अस्खान और जास मानक की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपने जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनें। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये। ये धड़क टू फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
5: चलो चले मितवा।
4: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए विविध भारती के सदस्यों के साथ। वॉक कीजिए आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
5: आजा शाम होने आई।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

थे नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे, दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो पास ही है, लेकिन दुर्घटनाएं दूरी देखकर नहीं होते, इसलिए ध्यान अति आवश्यक है आप कहीं भी रहें। और सुनते

0: चित्रा और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही ना इंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं

कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाज

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का मैं आऊं विशाल।
2: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
2: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख
1: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। कैसे हुई? बम कैसे हुई?
4: नहीं बताती।
1: नहीं,
4: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता

0: मैं तुम्हें और भी होता।
1: बस बस करो मेम साहब।
2: मेम साहब
1: क्या काम ना है तेरे मेम साहब अच्छे से तू?
2: नहीं
0: हमेशा मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
1: नहीं
0: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
3: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
0: तुम?
4: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
5: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती है तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
3: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया। एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई। एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थ घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: प्रकाश मेहरा पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: श्रोते हो, आणि आता वेळ झाली ती एनसीईआरटीच्या प्रायोजित कार्यक्रमाची, उमंगची.
1: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
2: और अजीत का भी नमस्कार. आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने.
1: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो.
2: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए. और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम. तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे.
1: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा.
2: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
1: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
2: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी.
1: आप सबका बहुत
2: श्रोताओं इस सप्ताह
1: अमूल्य योगदान की. आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाव पता चलता है. अजीत जी, अब आपकी बारी है.
2: जी विमलेश जी, तो साथियों समुद्र का सबसे

0: से प्रचलित नाम है सागर
1: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओ, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओ, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी।
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सखी चर्चा, और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@ciet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।

0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है। कविताएं हजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं।

0: तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।

0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे

0: सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद। इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन।

0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना शुभा मधुकर की आवाज़ से, इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डीजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी।

0: की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

0: पंकज उदास की आवाज़ आपने सुनी, शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।
1: रंग तरंग

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज़, मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में

सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी दे करके पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र में एक बात तो है जो बांधे रखता है, और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है, और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है, और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है। बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा, और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा। फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे, और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने, कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहाँ पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है, तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहाँ का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं, ये आप हमें बताइए।

थी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी। उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे। जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था। मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले ख़त्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई है और वो बार बार परोसते रहे और मैं ज़बरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई। वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीज़ें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी ये सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं ना खुशी से भर देती। तो एक

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह के बाद छेड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मज़ेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक कैप लगा कर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सबने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूँ सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूँ। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज़्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है बताइए हमें।

मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी जब

रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी।

0: 7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न चार बड़ी बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जयघोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में ये युद्ध घोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।
1: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर, मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। किसी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सब ने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधें। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
0: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र

0: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
1: समस्त बंगालवासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है, इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
2: इस सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध

0: इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई। अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय और अधिक संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेने लगे।
1: आगे 1906 में बहुचर्चित बारिसार प्रकरण के नेता अश्विनी कुमार दत्त के आह्वान को प्रतिक्रिया देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है, इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को 5 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: ये थी 27वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
1: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
3: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
3: माइग्रेशन पाथवे।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की।

0: श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इथल्या रुग्णालयात हलवलं आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. राज्य शिक्षण मंडळानं घेतलेल्या 10वीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर. यंदाही उत्तीर्णांमध्ये मुलींचं प्रमाण जास्त. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या नोंदणीकृत सदस्यांची संख्या मार्चमध्ये 17 लाखांवर. मुंबईतल्या पुनर्विकास कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करावी असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश. नाशिकमधल्या TCS धर्मांतर प्रकरणी आरोपी निदा खानला अटक. आणि प्रसिद्ध उद्योगपती रवी पंडित यांचं निधन. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है.
2: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं. कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है. घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है.
2: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है. तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला. ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है.
2: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही.
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है. तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है.
2: जी बिल्कुल
1: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ. बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
2: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है. तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ.
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला. मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन है.
2: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है. घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है. और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
2: जी.
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है.
2: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको. पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए.
2: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत.

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन, कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह। तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से
0: हसीना भी। तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया। तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल हैं, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना बताइए।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, आपकी तरफ कैसा मौसम है?
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुन रहा।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सखी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा ये मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से जी। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती हैं हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता
0: जी,
1: जानकारियां भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: पार्टी का एक गीत मालिका है
1: जी,
0: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
1: जी, हाँ
0: किया। और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविधार्थी सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल हो गई
1: जी।
0: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविधार्थी सुनते सुनते।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी। हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में
1: जी।
0: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
1: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
1: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत। पान

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है! आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है?
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
0: सीख रहे हैं
1: से अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं,
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है। ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम
0: आपने,
1: कुछ भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत् तत् है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है,
1: वो जैसे बोलती थी, थई जोर से मारो, तत् लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसी ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: पर
0: सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी, हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है ना?
1: हाँ, इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है।
0: जी,
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ।
0: जी,
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत् तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक है, तत् तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक है, टिक दा दिक टिक है, टिक दा दिक टिक है, ता थे तत् तत् थे, तत् तत् थे, तत् तत् थे। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी, तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिच्चल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: लगी थी।
0: जी वो बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है पान बिहार, है ना सुनने में?
1: इस अच्छा सा और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ।
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना?
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत पे ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: ये निंदाई खुदाई है, तो खुद चारा वारा डालना है,
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी हैं?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु
1: हाँ
0: भी
1: है
0: हैं?
1: ना, है भैंस भैंस है,
0: क्या है वहाँ पर पशुधन
1: भैंस
0: में?
1: है, भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे। तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: भी
0: देने
1: बहुत है
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके, बैठ
1: गाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी
0: जी
1: वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं।
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर
0: होता
1: वो वहाँ
0: होगा?
1: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे

0: सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: तू कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं?
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: बोल के बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए। हाँ, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम लता तिवार साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288, यानी 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में

ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

0: वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगे, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
1: तो कितने

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर

पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नज़दीक पहुँचे। हाथों में ग्लब्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्ची को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें

मोबाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्हे नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल

जवाब किए। फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्चे मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि माँ बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताज़ी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर ये अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई?

मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का के जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीरव निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना

दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से

छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

0: हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को, मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को अपना एक इकरार दे दे। मैं क्या दे पाऊंगा तुझे इस मोहब्बत के सिवा, बस तू मुझे अपना बना ले, मुझ पर ये एक एहसान कर दे।

0: मत जाओ मुझे यूं अकेला छोड़कर ऐ मेरी जान, मेरी हर धड़कन तुझसे ही है ये बात तू मान। अगर जाना ही पड़े तो वादा कर जल्दी लौट आएगी, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है यूं देर तक मुझे ना तड़ पाएगी।
1: इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।

चांद खिड़की पे ठहरा है तेरी राहों की तरह, और रात खामोश है मेरे जज्बातों के साथ। नींद आंखों से कोसों दूर भटक रही है, और तू याद आ रही है हर एक धड़कन के साथ।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। ना कल की फिक्र, ना आने वाले पल का हिसाब, जो मिला उसी में ढूंढ लिया हर बार कुछ खास। हवाओं के संग बहते हुए जीना ही उसूल बना लिया। जैसी भी मिली जिंदगी, उसे वैसे ही हंसकर गले लगा लिया।

तेरे चेहरे की लकीरों में भी नूर सवसता है, हर गुजरा हुआ लम्हा तुझ में फिर से हंसता है। वक्त चाहे जितना भी सफर तय कर ले, पर तू आज भी दिल को पहली मोहब्बत सा लगता है।

तेरे रास्तों से हर कांटा चुन लूं मैं, तेरे हर ख्वाब को अपना बना लूं मैं, तेरी हर खुशी पे अपनी दुनिया लुटा दूं मैं, तेरे हर गम को हंसकर अपना बना लूं मैं। बस एक अर्ज है दिल से, उम्र भर साथ निभाने का वादा कर दे।

0: राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। पांच विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। दो विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए तराने नए पुराने के शेष गाने। ये गीत है अभिमान फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। मजरूह के लिए के इस गीत की धुन बनाई है एस टी बर्मन ने।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड

एक पहेली लीला। इस फिल्म में अभी आपने सुना तुलसी कुमार, आलम खां, ऐश्वर्या मजूमदार और डब्बू मलिक को। बोल कुमार के थे, संगीत उजैर जायसवाल का। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया यादों की बारात फिल्म का गीत। तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

अगला गीत सोनू निगम और नीति मोहन का गाया हुआ है, फिल्म है ब्रदर्स। धुन बनाई है अजय अतुल ने, खूबसूरत बोलों को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया त्रिशूल फिल्म का गीत, बोल साहिर लुधियानवी के संगीत खयाम का।

अब से थोड़ी देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या रंजन। संगीत सरिता में सुबह शाम 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें, कलाकार गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर। आज आप सुनेंगे इसका

शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम सुनिएगा। रात 8 बजे हवा महल में हरीश दीक्षित की लिखी नाटिका सुनवाई जाएगी, रिजल्ट का चक्कर, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर का। नए गाने आप सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में रात 8:15 पर।

आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात 9 बजे। आज के फनकार कार्यक्रम फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर केंद्रित है। इसे आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे छाया गीत और रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात। ये थे आज के कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

जागो सुबह हो गई। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 5 बजे। वंदन वार का समय होगा 6:05। संगीत सरिता में सुबह 6:45 पर श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें, इसका 7वां भाग प्रसारित किया जाएगा। कलाकार होंगी गायिका विदुषी कल्पना छोजरकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7 बजे। हम हेराही प्यार के, इसे आप सुनते हैं सुबह 7:30 पर। त्रिवेणी का समय होगा सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है सुबह और रात 9:30 पर। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक तलत महबूद पर। पिटारा में सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका संसार, आलेख और स्वर ममता सिंह का। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे मैटनी शो। 12:05 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफरी कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं दिन में 1 बजे। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। और मन चाहे गीत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 3 बजे। दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक पोस्टमैन का पहला भाग। ये नाटक के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं पीएस कृष्णस्वामी, निर्देशक महेंद्र मोदी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रिकर की बातचीत प्रसारित की जाएगी। तराने नए पुराने कार्यक्रम शाम 5:30 पर। शाम 7 बजे विशेष जयमाला में मुलाकात होगी पार्श्व गायक मनहर उदास से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी के अंतर्गत सुनो कहानी पत्नी का पत्र का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। चित्रलोक रात 8:15 पर। छायागीत 10 बजे और ढलती जाए रात 10:30 पर। यह था झरोखा आज और कल के मुख्य कार्यक्रमों का।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में सुना। अब सुनिए नील कमल फिल्म में आशा भोसले को, संगीत रवि का, बोल साहिर लुधियानवी के।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, क्या आज की इस कड़ी को वीणा सहस्त्रबुद्धि के लिए रखा जाए? अगर आप कहें
2: बिल्कुल जरूर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धि जी, आप वैसे कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने पिताजी पंडित शंकर राव बोडस एवं उनके बड़े भाई पंडित काशीनाथ बोडस जी से शिक्षा प्राप्त की संगीत की, जो पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। और उसके अलावा भी उन्होंने पंडित बलवंत राय भट्ट जी, वसंत ठकार जी, पंडित गजानन राव जोशी जी, गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोनकर जी आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। और इनकी गायकी में इसीलिए ग्वालियर किराना जयपुर घराने की गायकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जी। और गांधर्व महाविद्यालय के लिए भी बहुत काम किया। उन्हें गांधर्व मंडल की ओर से संगीत महोपाध्याय की पदवी से भी विभूषित किया जी। और इतनी उत्तम रचनाएं उन्होंने बनाई हैं
1: जी।
2: तो वीणा जी की एक रचना मैं गाकर आपको सुनाती हूँ, भोपाल तोड़ी राग जो सुबह का राग है, एक बंदिश है वो मैं आपको सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।
2: जो मध्यलय तीन ताल में है, तो पहले मैं आपको भोपाल तोड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं हमारे सुनने वालों के लिए। तो भोपाल तोड़ी ये राग भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है और तोड़ी अंग से गाया जाता है। इसकी जाति जो है वो औडव है, मध्यम इसमें और निषाद ये दोनों स्वर वर्जित है
1: जी।
2: रे ग ध इसमें कोमल लगते हैं। दिन का पहला प्रहर इसका समय है और वादी इसका धैवत एवं संवादी गंधार है। भक्ति भाव से ओतप्रोत यह राग बहुत ही सुंदर और सुबह के समय तो बहुत ही आनंददायक होता है।
1: तो अब कौन सी बंदिश आप प्रस्तुत करेंगे?
2: आदरणीय वीणाताई ने बनाई हुई द्रुत तीन ताल में एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। तुम बिन कौन सहाय या जग में दूसरो न कोई।
1: स्वागत है।

0: वाह बहुत सुंदर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धि की इस बंदिश को बड़ी ही सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया कल्पना जी, और इस रचना को सुनते हुए हमारा मन भक्ति भाव के सागर में हिलोरे ले रहा था। और अब बताइए कि अब कौन सी रचना आप प्रस्तुत करेंगे या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: अब मैं वीणा ताई के आवाज में और उन्होंने बनाई हुई रचना राग दुर्गा में विलंबित एक ताल का एक ख्याल सुनवाना चाहूंगी।
0: प्रस्तुत है जी ये रचना।

0: आज की इस कड़ी में हम जानकारी दे रहे थे विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के बारे में और उनकी बंदिशें सुनवाई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये कड़ी भी बहुत पसंद आएगी और कल की कड़ी में कुछ और जानकारी, कुछ और बातें हम लेकर उपस्थित होंगे। कल्पना जी, आपको धन्यवाद। अब हम यहाँ पर विदा लेते हैं आज की इस कड़ी में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी 537.6 मीटर्स अर्थात 558 किलोहर्ट्ज वर ठीक 7 वाजता बातम्या।

0: हे भगवान, हर एक नट पर एक नई आवाज।
1: उहा, उहा, उहा।
0: ओह ऑलमाइटी, बस एक अदद फरियाद है, किसी को कंपाउंडर कभी मत बनाना, और बनाए बिना ना चले तो मैटरनिटी होम का बिल्कुल मत बनाना।
1: उहा, उहा, उहा, उहा।
2: जोसेफ।
3: यस डॉक्टर।
4: तुम अभी गया नहीं रोजी के पास?
3: रोजी? अभी जाता हूँ, ये चला वो चला।
2: देखो, साथ लेकर आने का मैं अंदर है।
3: राइट डॉक्टर, साथ लेकर आने का मैं अंदर है। ओह रोजी, आई एम कमिंग रोजी, रोजी।
5: डॉक्टर साहब अंदर हैं क्या?
3: हाँ जी डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल हैं। बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
5: गुड मॉर्निंग कंपाउंडर साहब, आप बड़े जल्दी में हैं क्या?
3: बिल्कुल जल्दी में है। बैठिए वर्मा साहब, अभी बैठिए। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
5: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या?
6: शायद अंदर ही हैं।
5: अंदर हैं तो आ ही जाएंगे। माफ कीजिएगा, नाचीज को वर्मा कहते हैं।
6: और मुझे कुमार।
5: ओ कुमार, आपके कितने साहबजादे हैं कुमार साहब?
6: जी अभी तक तो।
5: ओ समझ गया, समझ गया। तो आपका पहला तजुर्बा है?
6: जी आपका।
5: अजी अपनी बात ही छोड़ दीजिए साहब, तजुर्बे चार।

0: गिनती पांच।
1: पांच?
0: क्यों, डर गए क्या? आपका कसूर नहीं है हुजूर, आपका कसूर नहीं है। जमाना फैमिली प्लानिंग का जो है, हम तो साहब लक की प्लानिंग कर रहे हैं।
1: लक की प्लानिंग?
0: जी हाँ साहब, लक की प्लानिंग। हमारे जोशी के मुताबिक इधर सातवें साहबजादे आए और उधर हम।
1: आपका लक खुला।
0: बेशक बेशक, हम तो पामिस्ट्री में पूरा विश्वास रखते हैं।
1: मुबारक हो साहब, लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
0: कैसी बात कर रहे हैं साहब, इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
1: अजी साहब, हो सकता है छठे और सातवें साहबजादे एक ही साथ तशरीफ ले आए।
0: अब हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है।
2: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: पता नहीं साला बात करता है कि फिल्म के हीरो हीरोइन के मापिक टेलीफोन पर डुएट गाना गाता है। चार मरतबा ट्राई किया पन साला एवरी टाइम एंगेज।
1: किसको फोन करना है डॉक्टर साहब?
0: अपनी मिसेज को करता है, किसी और को नहीं।
1: वो क्या यहाँ नहीं है?
0: क्या मगजमारी। अरे वो इधर होएगा तो हम उसको फोन करेंगे। बाबा वो पिंजरा पोल मैटरनिटी होम में है।
1: अच्छा तो आपने एक और मैटरनिटी होम खोल दिया?
0: ओ माय गॉड क्या मगजमारी। अरे बाबा पिंजरा पोल मैटरनिटी में वो डॉक्टर नहीं मरीज है। मरीज है।
1: तभी हम जैसे आप भी रिजल्ट के चक्कर में है डॉक्टर साहब।
0: रिजल्ट? काय का रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अरे कौन सा रिजल्ट का चक्कर? हेलो, यस डॉक्टर पालनावाला स्पीकिंग। व्हाट? मिसेस पालनावाला? वो इधर नहीं है। आप कौन है? आप प्रेसिडेंट मंडल की महिला है तो? अच्छा अच्छा हाँ, आप महिला प्रेसिडेंट नहीं, महिला प्रेसिडेंट का तरफ से बोलता है। हाँ, हाँ, आपका महिला मंडल से हमको क्या मतलब बाबा? क्या महिला मंडल का वाइफ तुम्हारा प्रेसिडेंट है? क्या साला मगजमारी है? ऐसा महिला मंडल का प्रेसिडेंट तुम्हारा वाइफ है? देन व्हाट? आज शाम महिला मंडल के जलसा में तुम लोग हमारा मिसेज पालना वाला का टॉक रखना मांगता है, पर काहे को बाबा? फैमिली प्लानिंग पर? अरे तुमको और कोई नहीं मिला? क्या बोला? आने की हालत में नहीं। पर बाबा तुम्हारा मतलब क्या है? सबका सब किसी दूसरे मैटरनिटी होम की पेशेंट है। पर हम बोलता है अपनी लिस्ट में एक नाम और बढ़ा दो, मिसेस पालना वाला। फालतू मगज मारी ओइच महिला मंडल। अरे महिला मंडल।
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
0: सबर करो नहीं जरा।

0: गुड गॉड, हेलो डॉक्टर गंजू, पालना वाला है? व्हाट, आई एम इंपेशेंट. नो, नॉट एट ऑल डॉक्टर, प्लीज इन्फॉर्म मी इमीडिएटली. ओके ओके
1: डॉक्टर साहब,
0: आप अपना पेशेंट ले जाओ, उसको फॉल्स पेन्स था.
1: व्हाट?
0: हाँ, 2 वीक बाद आने का.
1: अच्छा डॉक्टर, थैंक यू.
0: हाँ, और मिस्टर वर्मा
2: जी,
0: हम तुमको लास्ट टाइम बोला था तुम अपनी वाइफ का मर्डर कर रहा है. मर्डर? अरे बाबा, उसको ब्लड प्रेशर है, वो वीक है, और तुमको पॉपुलेशन.
2: डॉक्टर साहब, बात ये है कि देखिए,
0: क्या मगजमारी है
2: वो? डॉक्टर साहब, पामिस्ट.
0: पामिस्ट?
2: हाँ, पामिस्ट. वो लक लक.
0: पामिस्ट यानी लक? पामिस्ट यानी लक?
2: डॉक्टर साहब, वो तकदीर. तकदीर पामिस्ट बोला?
0: ओ डैम पामिस्ट. देखो, तुम अपना पेशेंट ले जाओ, पामिस्ट के पास ले जाओ अभी. यानी इसी भगत लक अनि टकडी टकडी अनि पामिस अनि मगज मारी. हेलो डॉक्टर, पालना वाला? अरे बाबा, बंदूक वाला नहीं, पालना वाला. व्हाट, मेजर सिंह? रॉन्ग नंबर.
3: डॉक्टर, डॉक्टर साहब वो आ रही है.
0: आएंगा तो अंदर भेज देने का.
2: बाउंडर साहब, आज डॉक्टर साहब का दिमाग बड़ा गर्म लगता है.
3: वो आई और दिमाग ठंडा. बिल्कुल ठंडा, बर्फ से भी ठंडा.
2: वो कौन?
3: अब बोलो, तुमको इतना भी नहीं मालूम?
2: नहीं.
3: वो परिस्तान की हूर है, मेरे मन की रानी है, दिल को

0: वो घायल करने का मसाला है। रोजी उसका नाम है, गाल पे तिल पहचान है।
1: अच्छा।
0: रोजी उसका
1: नाम।
0: अरे भाग जाग गई इस मैटरनिटी होम के।
1: कैसे?
0: अरे मेरे ब्रादर डॉक्टर मैम साहब पिंजरा पोल में, मैडम मिरांडा नर्स बीमार।
1: अच्छा।
0: आया धनवंती का आदमी भाग गया, वो गई काम से। अब बताओ, एक अदद डॉक्टर, एक अदद कंपाउंडर और एक अदद बुढ़ी आया से कहीं मैटरनिटी होम चल सकता है?
1: नहीं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: नहीं।
0: लेकिन नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अब आ रहा है।
2: यार किसी तरह डॉक्टर साहब का गुस्सा ठंडा करो तुम बस।
0: अभी तुम जाओ।
1: अच्छा।
0: एक घंटे बाद आना, मौसम बदल जाएगा।
1: अच्छा अच्छा, तो मैं जाता हूँ, एक घंटे के बाद आता हूँ, एक घंटे के बाद
3: जोसेफ।
0: यस डॉक्टर।
3: ओ आई नहीं?
0: जी नहीं, फिर जाऊं?
3: क्या मगज मारी किडर पे नहीं जाने का? उफ, आज तो माइंड ही चाउट हो गया।
0: वो आएगी, इन हो जाएगा।
3: ओ शट अप।

रिजल्ट का चक्कर। हवा महल में अभी आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए वजीर फिल्म का गीत। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में तर्ज बनाई है शांतनु मोइत्रा ने, बोल विधु विनोद चोपड़ा के।

अंतरा मित्रा और श्रीराम को अब सुनिए 1920 लंदन फिल्म में। बोल लिखे हैं प्रशांत इंगोले ने, संगीत कौशिक और आकाश का।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए हिमेश रेशमिया का गाया और उन्हीं का संगीतबद्ध किया सनम तेरी कसम फिल्म का गीत, वो लिखे हैं समीर अंजान ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं मनोज मुंतशिर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज सुबिन नौटियाल की फिल्म का नाम काबिल।

ये थे जुबिन नौटियाल फिल्म काबिल में। अब सुनिए जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन को फिल्म बार बार देखो में, बोल आदित्य शर्मा के संगीत जसलीन रॉयल का, और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही

0: पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्य और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य

0: केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

0: दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की

0: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VCK IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव ने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस।

धरती कहे पुकार के। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचनाकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अब सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म बहू बेगम में। साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत की धुन बनाई है रोशन ने।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीपंत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

बहारों के सपने। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में

0: अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम

0: भक्त की है
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का है?
3: मैं आऊं विशाल।
2: पंडित जी शुरू कीजिए।
4: मंगलम भगवान विष्णु
2: मंगलम अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
4: वस्त्र कंधे पर रख ले सम्मान।
3: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
5: नहीं बताती।
3: नहीं,
5: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं भी दुनिया में नहीं होता।
3: बस बस करो मेम साहब।
2: मेम साहब,
3: क्या काम नहीं तेरे मेम साहब जिससे तू?
2: नहीं
5: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
3: करता है।
5: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
3: सिकंदर ये तुमने क्या किया?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
6: तुम?
7: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
8: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह

0: फिल्म चारों खानी चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश बेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
1: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म।

नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार। छाया गीत के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा, वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियां आंखों से झलके, न खो जाएं कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने, ये सोचकर ही तो बंद कर ली हैं खुशी से अपने पलकें।

गंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन। लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली हैं सारी रातें। पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चिचोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारे बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को। होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था ना खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

दिल का ये मेल कोई आसान काम नहीं, जिसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल, बिखरा काजल, सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ, अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होंठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम, सुबह शाम दिन तमाम।

उस परदेसी ने किया है ऐसा जुल्म कि हम रहे ना हम, याद में उसकी कभी मनाए गम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितने आंसू बहाए, उसकी ही याद में उतने ही गीत भी गाए। शायद यही तो है प्यार का असर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको ही याद करके चैन से सोते हैं। प्यार की इस उधेड़बुन में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

0: रात
1: समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।